आज प्यास मेट लागे तपाईको यो माथाले समुद्रको भेट लाग्यो.

0: 뭐지 뭐지 뭐지 뭐지 어, 내가 어떻게 하니? 자자자자자자
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो
1: तू चार भी कल इकवा ले का
0: अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट

राम जी ने कहा हनुमान अगर सूर्य निकल गया तो लक्ष्मण मर जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्यदेव मेरा स्वभाव जान, अगर कबूती लेकर नहीं आऊंगा सूरज को उगने नहीं। राम जी रोते रोते कह रहे हनुमान मौत आगे बढ़ रही है, तो प्रभु आप कहते हैं मौत लक्ष्मण को खा जाएगी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ आज मौत को ही मार दूंगा, दुनिया में कभी कोई

0: हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जा। जामवंत ने कहा पवन समाना काचुक साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधरा का और शरीर, बोले क्या करो, समुद्र को पी जाओ या लंका उखाड़ करके आ रख दो।
1: जय श्री राम। जो पी जाए बिन सोचे पल में कालकूट को।

कुमार चला नहीं लांग दिया, क्षण भर में समुद्र पार किया, ले राम नाम की ध्वजा गिरा संग लंका बजा के गाड़ दिया, वो निडर नभ है उन्हें रावण का और मचा दी लंका बचा ही मामा सिया से मिल के भा भी वो लंका में।

0: तनिक डू लंकापति को परिचय में बजरंगी ने शुरू उत्पात किया। लंका में शुरू भी नाच किया और हंसी हंसी में रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। सब असुर भय सब भय भी सब आया लड़ते इंद्रजीत की एक से एक प्रचंड प्रहार पर काम न आए कोई भी। जब शत्रु सारे हार गया तब ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया रखने ब्रह्मास्त्र का मान बजरंग बलि ने खुद को बांध दिया। हुए पेश सामने रावण के बोले सभा के बीच में राम के जैसा रे महल में मच गया कोना हल बना कौन ये जिस पर तनिक दिन है।
1: मैं वायुदेव का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोकों के स्वामी परम प्रतापी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूँ जिनके अर्धांगिनी माता सीता का तुम छल से हरण कर लाए हो।
2: बस बहुत हो गई ये व्यर्थ की बातें, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए।
1: महाराज रावण मेरी अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने का सामर्थ्य रखता हूँ, परंतु मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है।
0: ये अस्त्र शस्त्र

समाज का कारण साधारण एक मानव होगा। कर्मों की ना कोई भी माफी, आज रात की जो आज्ञा होती मैं ही दे देता मृत्यु तुझे, तेरे लिए राम का दूत ही काफी। बात हुए दुष्कर्म तेरे, अब सिर पे मृत्यु नाच करेगी। तूने जलाई है पूछ मेरी, इस पूछ

0: राम का दास ये देगा घर के घर सब लांग दिए घर कूद कूद कर पार किए जा पड़े कदम मारुति के उन मैलों के छप्पर फाड़ दिए और मैल के मैल ही राख कर दिए किसी के भी वो हाथ आए ना उठी आज की लगते ऐसी जले असुर जो भाग पाए ना साधारण जो समझ के बैठा रावण की वो दूर की शंका भरी लंका में हनुमान ने बजा दिया श्री राम का डंका सोते जागते उठते बैठते राम का ही तू ध्यान करेगा जग मुख वाले हर मुख से अब राम का ही तू नाम कहेगा
1: लंकापति रावण श्री राम के साथ बैर रखने वाले को स्वयं त्रिदेव भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, यही एक अपराध आपके समस्त परिवार और सोने के महलों के साथ इस लंका का विनाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में चीखों के सिवा कुछ नहीं बचेगा, मृत आत्माओं को पानी भी पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।
0: ताकर दूत अनल जय श्री जादरा न सोते कारण गिरी जा उल्टी पलटी लंका सब जारी कूदी पूरा पूरी सिंध मझारी मात वो ही दीजे कट त्रीना जस रघुना एक वो ही दीना चुड़ा मनी उतारी तब जाए हूँ हर समेत पवन सुत लय हे हूता तस्बोर प्रणामा सब प्रकार पर पूरन कामा दीन दयाल बिरिज संभारी हर हो ना संकट भारी।

0: राम जी ने कहा हनुमान अगर सूर्य निकल गया तो लक्ष्मण मर जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्य देव मेरा स्वभाव जानते, जब तक भूपी लिख
1: जब माता सीता अशोक वाटिका में अश्रु बहा रही थी तब एक ही नाम लंका के अंत का कारण बन चुका था।